हर त्या वह तुद जी से जन जुग मैं सुखवासी से मुक्त पय जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी।

संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछान, घट घट के पट पट की जान। जा बुद कर

जेते बदन श्रेष्ठ सब तार आप अपनी बूझ उचार तुम सब ही ते रहत निरालम।

गुरु उपदेश अविश अमूल्य सुख सागर है साधु संग शोभा लहर तरंगी अतुली माणिक मोती हीरिया।

प्रदाता दान मत पूरा। हम थारे भिखारी जियो, मैं क्या मांगू किछ थिर ना रहा जी।

गुरु गरीब निवाज एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कवियो बात बेनती चौपाई हमरी करो हादर रक्षा पूर्ण हुए चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट सब है तुम का बहु आप हादय मोहे बचाव सुखी बसै मोरो परिवार सेव सिख्य सब

तारा के विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूप रंग भयो राव कहीं भूपांडज जेर जसेत जकीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हुआ बैठा कहूं सिम भयो शंकर कैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए चंपव आजुआ स्वरूप सुयंपव आब रक्षा मेरी तुम करो सिखे उबार सिखे संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे स्तुहि तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुख है मरे पुरख जमन पग परे ते हारे तिनके तुम संकट सुटारे जो कल को एक बार त्या है ताके काल निक नहीं है रक्षा हुई ताहे सब काला दोस्त अरे सुटरे तत्काला कृपा दृष्टन जाहि निहरि हो ताके ताप तनक में हरि हो रिद सिद्ध कर्मो सब हुई दुष्याह श्व सके न कोई एक बार जंतु में संभारा काल फास ते ताहि उबारा जिन नर नाम ते हारू कहा दारिद दुष्ट दुख ते रहा

कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता किलविक शुकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को शय करता श्री अस्तु जप है।

चौथी संबत 1700 कहित जय भाद्रव सुदी अष्टमी रविवार तीर्थ तुद्रुव ग्रंथ सुधारा सवैया।

शास्त्र वेद सब वैव भेद कहे हम एक न जानियो। श्री सुपान कृपा तुमरी कर मैं न कहे हो सब तो हे बखानियो दोहरा।

खंड सच्चे ब्रह्मंड सच्चे त्रिलो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फुरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुदा खेल करोड़ सच्चे सप्तान सच्चे सब जोर सच्ची तेरे

बिन सतगुरु के नाना पाया, बिन सतगुरु के नाना पाया, सतगुरु चा प्रखन कर प्रगटाक सुनाया, सतगुरु मिनक सदा मुक्त जिन विच मौ चुकाया, उत्तम विचार जिन सच्चे स्यों चितलाया।

पौड़ी सच्चा सभ्यक्तु जिन सच्चो सच वरताया, जिस तू देह तिसमिल सतात ने हच कमाया, सतगुर मिलस पैन के हृदय सच बसाया, मूरख सचन जानन मन मुख जन्म गवाया, विच दुनिया काहे आया, विच दुनिया काहे।

देखा है कि ताप अंदर कच्ची पक्की सारी है, जो आया सोचल से सबको आए वारी, जिसके जे प्राण के साबन वसारी है, अपने दिया अपना आपे ही काज सवारी है।

0: करता कादर क्रम देव जी रिजिक संभाए साई कार कमान तर छोटी तना पाए नानक के बारे और तुझ ना ही जाए सो करे जित सर जाए सो करे जित सर जाए सो दे
1: स्वयं सेवा प्रवान करनी जी कीर्तन सेवा करदे हुई भुला चुका दी खिमा बख्शनी है जी महाराज से संगत बख्शन जो घन बख्श लेना जी सोहना आप जी दे सन्मुख भाई साहब भाई खजान सिंह जी आप जी ने अज दे पावन पवित्र मुखबाग की कथा विचार आप जी ने सरवण कराउणगे जी सुहावना पासों आप गुरमत विचारा सरवण करिए जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की